ना जी। अच्छा छिना जी, दानिश दानिश छिना जी। अच्छा छिना जी, शाहू जाता तुम्हारा छिना जी।